अंतर शब्द मिली सहज तपत बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहज हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चा शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़।

अर्थ ले हो भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे अपना भाणा तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा।

अमृत शकशके गुरतुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा हर अमृत भगत।

शिंगार हबरस अर्पिय जह दुख सुनिए जम पंथ भणिए तह साध संग ना डरपिय कर कीरत गोविंद गुणिए सगल पराशत दुख है।

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कैर दै वसया मिटे तिसह विसूरिया अगाध बोध

वे पापी सदा फिरहै अपराधी मुखो अपर सतहावहै सदा सदा फिरहै अभिमानी सगल कुटुंब डुबावहै जित को लाया तित ही लागा तैसे कर्म कमावै कहो कबीर।

वीराभिष्ट छोड़ कर दोजक स्यों मन माना आसा। गगन नगर एक बूंद न बरखै नाद कहां जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माद।

कहे कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोए आसा। जो मैं रूप किए बहुतेरे अब हुन

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तिरंग

बड़ भागे जिन हर हर नाम अधारे हर हर अमृत हर रस पावे गुरमत भगत भंडारे जिन दर्शन सतगुरु सत

गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिरना होत बियोग। मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा। सतर दहन हर नाम कहन अवर कछ ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरा।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत् ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं।

मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर।

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पीलाए जमकाल। इत मद पीतै नानका बहुते खटिय है बेकार।

चलिए जो हर प्रभु का मैं देश नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा

सदा सुख बस है, सदा सच रत्ता मन निर्मल आवन जान रहाए। दूजे पाए परम विभूति।

पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम तिन चरण सरे वह हम लाग है तिन कै पाए राम हर हर चरण

वडहंस महल्ला पंजवा प्रभ करण कारण समरथा राम रथ जगत सगल देहथा राम समरथ शरणा जोग स्वामी कृपा निध सुखदाता हों कुर्बानी दास तेरे जिन्नी एक पछाता।

पयाण ज्योतिष पावे समरथ सोचिए हिलड़ा एहो संसारो जल थल महियल रव रहया साचड़ा सिरजन हारो साचा सिरजन हारो अलख अप

गुण छोड़ बिखल दिया अब गुण का बन जारो। पुंडड़े नाम विसारिया बुडड़े क्या तिस चारो, गुण

मिलहै। जे सतगुर लागहै साचे पाए, सतगुर सदा दयाल है। अवगुण शब्द जलाए, अवगुण शब्द जलाए, दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सचराती, सच्चे शब्द सदा सुख।

जाए। एक रोव है पिर है विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले। गुर प्रसादी साचा पिर मिले, अंतर सदा संभाले।

जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब तन तन। जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिलया।

पदे अपना कर्म उस राख न सा कहें कि पर कर जोहन लागा कर दर राख है जे रस चाख है जो

आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जप हो सुख होई अहनिस गुर के चरण सरेव हो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रखो कर अपने।

चात्रक जल, ज्यो चात्रक जल बिन बिल लावै, बिन जल प्यास न जाय। गुरमुख जल पावै सुख सहजे, हरिया पाए सुपहाई।

थापै साथ संगत बुद्ध पाई साकत का बकना इउं जानौ साकत का बकना इउं जानौ जैसे पवन चुलाई कोट पराध अशा दियो इहु मन।

जिसनो विसरै मेरा राम स्नेही तिस लाख बेदन जन आई रहाउ। जिहि जन ओट गही प्रभ तेरी से सुखिए प्रभ शरणे जिहि नर विसरिया।

गुर पूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोरठ महला पंजवां। भूखे खावत लाज ना आवे त्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाई है जित सिमरन दरगाह मुख।

हर पैज रखो भगवान महला चौथा। नानक प्रीत लाई तिन साचै तिस बिन रहन न जाई। सतगुर मिलै तां पूरा पाई है हर रस रसन रस।

बन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया नादी बेदी शब्दी मोनी जम के पटै लिखाया।

या भिखारी अक्षत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म।

अजहू सहिय दुलभ जन्म पुण्य फल पायो बिरथा जात अब बेकै राजे इंद्र संसार ग्रह आसन बिन हर भगत कहो।

सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण पह पहगी जो

हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से त्रिपतानी हर हर अमृत पी त्रिपता से सबला थी फूख फुखानी।

आई किव छूट है हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपा।

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस

परमेश्वर है, आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वतर रमणं, नानक अगनासन जगदीश्वर है।

पौड़ी। हर एक निरंजन गाय है सब अंतर सोई, करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अमर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा

तिन प्रभ आप भुलायो रहाउ। हर कथा हर जस साध संगत स्यो, एक मोहत न एव मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कुसुम्भ को, पर ग्रह जोहन जायो। चरण कमल स्यो पाओ न कीनो, नह

मन मिल संत जना जस गायो, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रत्न रत्न हर नीको, गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो।

शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए। सदा अलिप्त साचे रंग राता गुर कै सहज सुभाए। मानमुख

सरोवर है वडभागी पुरख लहन। गुर सरवर मान सरोवर है वडभागी पुरख लहन। सेवक गुरमुख खोजया से हंसले नाम लहन। नाम ध्यान रंग स्यों गुरमुख नाम लगन। तुर पूरब होवै लिखया गुर भाणा मन लैन। वडभागी

करते आवहो सुन हर गुण तीने सह सुभाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन को तुर लिखया तिन गुर मिलया तिन जन्म मरण पाओ भागा।

ਘਟ ਘਟੇ ਸਭਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕੋ ਏਕੋ ਰਾਮ ਪਧਾਰੋ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸੇਵਨ ਸਤਿਗੁਰ

नदर प्रभु सत्संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रस नरसाए नानक नाम प्रगासा।

गाओ मंगलो नित हर जन हो पुन्नी इच सबाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती मरै न आवै जाई राम।

तह जन्म न मरना, तह जन्म न मरना आवन जान, बहुण न पाइय जुनिए, नानक गुर परमेश्वर पाया, जिस प्रसाद इच पुनिए।

कह मन अभिमान कहत सुनत सभे सुख पावह मानत पाहे निधाना बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनों आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए।

आप प्रगटना, आप ही कट कट आप अलिपना, आप ते अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल महल्ला पंजवां।

सफल सो आया बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया।

निस्बास मन अनद होत चितवत किरपाल रहाव। जगत उदाहरण साध प्रभ तिन लागहो पाल, मोको दीजै दान प्रभ संतन पगराल। उक्त सिया

संग समावौ सास सास नह विसरै अनकत है न तावौ सफल दर्शन गुर पेटियै मान मोह मिटावौ सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनावौ।

हो अवरकाश सब प्रभ कै हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवां।

रहाउ। सोवत हर जप जागया देखिया बिस्माद पी अमृत तृप्ता से आता का अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कुटुंब उधारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीच अनाथ अजान मैं निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पही दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवां।

रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जीवालयन जाका वड प्रताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तहारी, मन बांश फल दित्यन नानक बलिहारी।

दृष्ट दृष्टाए। अब महान खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अब महान खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अब महान खोए खोए खोए खोई हों, मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल

संग हर बुहिया जब जगन्नाथ जगदीश पुछैया शरण परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहा पार अठारह मह चंदन ऊतम।

रख रख चरण हर ताल पूरैया, हर कै रंग रत्ता मन गावै, रस रसाल रस शब्द रवैया, निज कर धार चोवै अत निर्मल, जिन पिया तिन ही सुख लहिया, मन हठ कर्म करै।

राम जिन मानस जन्म ना पाया तिन भाग मंदेरा राम हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम गुर हर प्रभ अगम।

पाए। गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्लै पाए पौड़ी।

में सगले कुल उधरे नाम हमारे कार्य सीध नाम संग मनुआ गीध नामे ही हम निरपौ पहे नामे आवन जावन रहे।